0: लेखक हैं। इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है फिल्म क्रिटिक के तौर पर। हमारे साथ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, विभिन्न चैनल्स पर पत्र पत्रिकाओं में अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते हैं। पिछले 50 वर्षों से आप एक सक्रिय पत्रकार के रूप में समाज के बहुत सारे पहलू समाज को ही दिखाते रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। संजीव जी आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रदीप जी आपका स्वागत।
2: धन्यवाद बहुत बहुत।
0: तो आइए श्रोताओं, अब सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अभिनेता उत्तम कुमार का उल्लेख किया है।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, महानायक उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन।
0: तो आइए अब अपने सवालों के माध्यम से हम जानना शुरू करते हैं अभिनेता उत्तम कुमार के व्यक्तित्व को और साथ ही समाज से वो किस प्रकार से जुड़े थे इस बारे में। उत्तम कुमार का नाम जहन में आते ही एक करिश्माई मुस्कान सामने आती है, एक रौबिला अंदाज और कैमरे पर सहज अभिनय का जादू हमारी आंखों के सामने तैरने लगता है। लेकिन पर्दे की रोशनी और तालियों की गड़गड़ाहट से परे उत्तम कुमार का एक और रूप भी था। क्या था वो रूप? एक सहृदय इंसान, एक संवेदनशील कलाकार और एक उदार सहयोगी। और भी कई रूप थे जो हमें आज हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। सबसे पहले हम उनके अभिनय क्राफ्ट के बारे में जानना चाहेंगे और मैं संजीव जी यहाँ आपसे जानना चाहूंगी। उत्तम कुमार को बांग्ला सिनेमा का पहला ऐसा स्टार माना जाता है जिन्होंने थिएटर के लाउड एक्टिंग शैली को तोड़कर कैमरे के सामने बहुत ही नेचुरल और सटल अभिनय की शुरुआत की थी। तो उनके इस क्राफ्ट के बारे में आप क्या हमें बताना चाहेंगे?
1: बहुत ही अच्छी शुरुआत की आपने नीलम जी, और बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम लोग आज उत्तम कुमार जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात प्रोग्राम में किया है। तो इस मौके पर उत्तम कुमार जी को चाहने वाले उनके अभिनय कौशल के बारे में जो भी बारीकियां हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, उन सब के बारे में जो भी सिनेमा प्रेमी है, मुझे लगता है कि बहुत ही गहराई से जानना चाहेंगे। और जो आपने सवाल किया है अभिनय क्राफ्ट के बारे में, वह एक बहुत अहम सवाल इसलिए है कि उत्तम कुमार जी का अभिनय जब हम सिनेमा में देखते हैं, फिल्मी पर्दे पर जब हम देखते हैं, तो उनके बारे में एक शब्द बहुत ही खास तौर पर कहा जाता है कि वह बहुत ही मासी एक्टर थे। लेकिन मासी के साथ साथ जब हम उनके अभिनय कौशल को देखते हैं पर्दे पर, तो हमें उनके मासी आम तौर पर ऐसा कहा जाता है एक्टर को कि जो बिल्कुल ही आम दर्शक होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कलाकार। लेकिन उत्तम कुमार आम से आम और खास से खास दर्शक को भी उतने ही प्रभावित करते हैं। खास कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी क्लासिक किस्म के जो दर्शक होते हैं, जो बहुत ही गुड सिनेमा को देखते हैं और अभिनय की ऊंचाई को पहचानते हैं, उनकी बारीकियों को, उसमें बहुत ही उनको सुखानुभूति मिलती है, तो वो सब कुछ हम उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में देखते हैं। तो मासी एक्टर के साथ साथ वो एक मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं। और जिस वक्त वो बांग्ला सिनेमा में बतौर अभिनेता अपनी पहचान उन्होंने बनाई, उस वक्त अगर हम देखें तो हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार साहब भी थे, देवानंद साहब भी थे, राज कपूर थे, इतने बड़े बड़े दिग्गज थे। इसके

0: बावजूद उत्तम कुमार जी की जो पहचान थी, आज की शब्दावली में जो हम पैन इंडिया कहते हैं, पैन इंडिया इम्पैक्ट छोड़ने वाला कोई एक्टर, तो वो उस वक्त, आज सोचिए कि इतने सालों पहले हमने उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में एक पैन इंडिया का प्रभाव हमने देखा था। क्योंकि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, मेरा पूरा अनुमान है कि उनकी बांग्ला फिल्में जितनी भी हैं उनसे कम वाकिफ होंगे, लेकिन जो हिंदी फिल्में उनकी है, अगर उसमें देखें अमानुष एक बहुत ही चर्चित फिल्म है
1: जी।
0: लेकिन इसके अलावा भी उनकी दूरियां बहुत ही अच्छी फिल्म है, और भी कई सारी फिल्में हैं, 2-3 फिल्में और भी हैं, उनमें अगर हम अभिनय कौशल देखते हैं उनका, तो पता चलता है कि वाकई क्या रेंज है। मासी के साथ साथ वो कितने शानदार मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं, और मेथड एक्टर की जब भी बात होती है हिंदी में तो दिलीप कुमार जी का जिक्र करते हैं
1: जी।
0: मासी का जिक्र करते हैं, तो फिर देखिए देवानंद का जिक्र करते हैं, तो दोनों की क्वालिटी, बल्कि दोनों बहुत ही उनको बहुत पसंद करने वाले कलाकार भी रहे हैं, तो सारी खूबियां हम उत्तम कुमार जी में पाते हैं, तो अपने नाम को वो बिल्कुल सार्थक करते हैं। उत्तम कुमार सिनेमा के उत्तम है, सर्वोत्तम है,
1: उत्तम कुमार सिनेमा के सर्वोत्तम जी। बहुत खूब आपने कहा। मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगी, हम सत्यजीत रे जी की फिल्म का अगर जिक्र करें, नायक या फिर सप्तपति हो या फिर है चिड़ियाखाना, तो किसी भी फिल्म का हम जिक्र करें, उत्तम कुमार ने अपने आप को कभी भी एक छवि में बांध कर नहीं रखा। अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए और पूरी तरह से उस किरदार को उन्होंने जीवंत किया पर्दे पर। तो एक अभिनेता के तौर पर आप उनकी रेंज के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से वो न्याय करते थे उस किरदार के साथ?
2: देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा
1: जी
2: कि उन्होंने उत्तम कुमार को उनकी जन्म शताब्दी पर याद किया। अभी 3 सितंबर को उनकी जन्म शताब्दी थी
1: जी,
2: और उससे पहले उन्होंने उनको याद किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब आप देखिए, उत्तम कुमार जी को दुनिया से विदा हुए 46 साल हो गए, 1980 में उनका निधन हुआ था, और उन्होंने अपने 30 वर्ष उनके बहुत ऐसे रहे बंगाली सिनेमा में, उसके बाद हिंदी सिनेमा में भी, कि उन्होंने बहुत नाम कमाया, उनको महानायक कहा गया। सत्यजीत रे तक ने जो नायक फिल्म बनाई वो इसीलिए बनाई उनको ध्यान में रखकर, तो वो इस तरह का उनका वो था। लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उत्तम कुमार को नहीं मिला। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ सब उत्तर भारत के जो सिनेमा है, हिंदी सिनेमा है, बॉलीवुड का है, इवन जो साउथ का सिनेमा है, उनके लोगों को भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल जाते हैं, उनको दादा साहब फाल्के मिल जाते हैं, लेकिन उत्तम कुमार को पद्मश्री पुरस्कार तक नहीं मिला जबकि उन्होंने इतना काम किया। उनको बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार, सबसे पहले जब राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई तो 1957 में सबसे पहले उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया, जो ये बताता है कि वो राष्ट्रीय पुरस्कार के काबिल थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उनको भुला दिया गया, ये बड़ा खराब लगता है। उनको बाद में फिल्म निर्माता के रूप में भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, कुल 5 बार पुरस्कार मिले, उसके बाद उनको इस तरह की सम्मान तो मिलते रहे, फिल्म फेयर में मिलते रहे, साउथ के इस तरह के मिलते रहे, लेकिन जो राष्ट्रीय पुरस्कार इस तरह के हैं, जो मतलब राष्ट्रीय सम्मान जो हमारा एक अलग मान देते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या दादा साहब फाल्के जो फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, वो उनको नहीं मिला। तो उनके साथ सुचित्रा सेन ने 30 फिल्में की। आप देखिए सुचित्रा, उनकी जो रेंज है उसकी बात भी इसमें आ जाएगी कि उन्होंने, सुचित्रा सेन ने अपने जीवन में कुल 60 फिल्में की, लेकिन 60 में से 30 फिल्में सुजीत कुमार, 30 फिल्में उत्तम कुमार के साथ की। तो उत्तम कुमार के साथ 30 फिल्में करना इतनी बड़ी एक्ट्रेस का बहुत बड़ी बात है, और इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा मशहूर हुई। तो ये जो है, उसके बाद इन्होंने खैर और बहुत सारे, इन्होंने तो बहुत अभिनेत्रियों के साथ काम किया, इन्होंने 200 से ज्यादा अलग अलग फिल्में की, और इसमें कभी वो एक चोर बनते हैं तो कभी न्यायाधीश बनते हैं, कभी जादूगर बनते हैं तो कभी अलग अलग इस तरह की भूमिका नायक बनते हैं। जो नायक फिल्म है उसमें का नायक का रोल है, उसमें एक देखिए जो सत्यजीत रे इस तरह की फिल्म बनाई कि एक नायक जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के लिए कलकत्ता से, आप सो कोलकाता बोले आप, कोलकाता से दिल्ली आ रहा था, तो 24 घंटे की जर्नी थी उस समय जो ट्रेन की, उसमें किस तरह एक पत्रकार इनको मिलती है शर्मिला टैगोर, जो शर्मिला टैगोर के साथ में इनकी बांग्ला फिल्मों में जो भी रही, और हिंदी फिल्मों में तो ज्यादातर फिल्में इनकी उन्हीं के साथ आई, शर्मिला टैगोर के साथ। तो ये जो वो जो नायक का वो जो था, इतना बढ़िया चित्रण था इस फिल्म के अंदर। सत्यजीत रे साहब तो ऐसे वो थे जिनको सबसे ज्यादा फिल्म पुरस्कार मिले, और फिल्म जगत के भी अकेले ऐसे वो फिल्मकार हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पुरस्कार लिए। अभी तो उनके निधन को इतने साल हो गए, अगर वो अभी तक रहते तो शायद ऐसा रिकॉर्ड बन जाता कि किसी को नहीं मिलता, ऑस्कर तक सत्यजीत रे को मिला। तो सत्यजीत रे जैसा अभिनेता फिल्मकार, इतना बड़ा फिल्मकार जो इनको पसंद करे और आप इनकी इस तरह को फिल्म बनाए, बाद में भी इन्होंने सुचित्रा सेन के साथ एक फिल्म बनाने की सोची थी, लेकिन सुचित्रा सेन ने सत्यजीत रे के साथ फिल्म करने से मना कर दिया, तो सत्यजीत रे ने वो फिल्म बनाई ही नहीं। लेकिन इनकी जो रेंज है वो तो आप देखिए कमाल की रेंज है, और आप सत्यजीत रे से इन्होंने सीखा भी, इस तरह वो निर्माता थे, निर्देशक थे, लेखक थे, संगीत पे ध्यान देते थे, वही खूबियां उत्तम कुमार में। उत्तम कुमार ने देखिए निर्माता के रूप में 9 फिल्में बनाई, निर्माता निर्देशक भी इतने की, और संगीत में भी उनको बहुत था, गायक के उस रूप में भी काम किया, निर्देशन भी किया, और हिंदी फिल्म

0: भी जो उनकी देखिए चाह है वो बंगाल के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत महानायक कला है और उनकी अलग वो थी। और मुझे वो दृश्य भी अभी तक याद है जब 1980 में उनका निधन हुआ, तो
1: जी
0: इतना सैलाब था, जनसैलाब उभरा हुआ था उस समय के हिसाब से, इतना जनसैलाब बहुत किसी अभिनेता के उसमें शायद कभी ना देखा गया हो।
1: जी
0: बाद में तो हम चाहे अब नया जमाना आ गया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सब कवर करते हैं, उस
1: जी
0: समय तो कोई था ही नहीं। फिल्म डिवीजन ने कुछ बनाई, कुछ और लोगों ने बनाई
1: जी
0: उनकी
1: बिल्कुल
0: फिल्म, कुछ सत्यजीत रे ने भी बनाया था उनका वो हिस्सा जब उनकी शव यात्रा निकली हुई थी, इतना बड़ा वो था, लेकिन वो इतनी कम उम्र में चले गए, सबसे बड़ी बात यह है।
1: यानी एक अभिनेता के रूप में भी परिपक्व थे और उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे अनछुए पहलू थे, और
0: बिल्कुल
1: अगर व्यक्ति के तौर पर भी हम देखें उन्हें तो
0: हाँ
1: समाज से वो गहरे से जुड़े हुए थे,
0: बिल्कुल
1: इसीलिए इतने सारे लोग जो है जब उनके निधन की खबर उन्हें पता चली तो
0: बिल्कुल
1: तुरंत वहां पहुंचे।
0: हाँ
1: जी,
0: ये
1: यहां मैं प्रदीप जी इसी मोड़ पर आपसे आपकी पसंद का कोई गाना पूछना चाहूंगी, उत्तम कुमार से जुड़ा हुआ।
0: देखिए उनके मेरे को कई गाने पसंद हैं, हिंदी फिल्मों के गाने तो सारे समझ में आते हैं, बंगला फिल्म के गाने भी जब सुनते हैं थोड़े अच्छे लगते हैं। हिंदी फिल्मों की बात करूंगा तो उनकी अमानुष फिल्म,
1: जी
0: उन्होंने हिंदी में आप देखिए करीब 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन अमानुष उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म थी।
1: जी
0: और जो मुझे अभी तक याद है दिल्ली के कश्मीरी गेट पर ब्रिटिश सिनेमा है जहाँ इसकी सिल्वर जुबली हुई थी अमानुष की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमानुष वहाँ खूब चली। और उत्तम कुमार भी बहुत खुश थे देखकर कि
1: जी
0: मेरी दिल्ली जैसे शहर के अंदर, कलकत्ता में उनकी बंगाली फिल्मों ने तो बहुत जुबली बनाई,
1: जी
0: और कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो उनकी हिंदी में भी आई, बंगला में भी आई। अमानुष भी ऐसी फिल्म थी, इसके अलावा एक बंदी फिल्म भी ऐसी थी जो हिंदी बांग्ला दोनों में साथ बनी, तो वो
1: जी
0: वहाँ बंदी वहाँ चली यहाँ नहीं चली, लेकिन अमानुष वहाँ भी चली और यहाँ भी चली। तो
1: जी
0: उसका जो गाना है सबसे अच्छा वो तो भूल ही नहीं सकते, जो
1: जी
0: अमानुष का टाइटल सॉन्ग है
1: जी
0: और उसको जो इंदिवर ने लिखा है, और किशोर कुमार का बहुत बेस्ट गाना है, तो
1: दिल
0: उस
1: ऐसा किसी ने
0: दिल
1: मेरा तोड़ा।
0: ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा,
1: जी
0: आप देखिए इतने सुंदर शब्द, इतने सादे बड़े शब्द हैं, कहीं मुश्किल बड़े शब्द नहीं है। इंदिवर ने इतने अच्छे से इस गाने को लिखा, और जो उसके अंदर चलता है बोट के अंदर, शिप के अंदर, शर्मिला
1: जी
0: टैगोर पीछे लेटी हुई है, और जब वो गाना सुनती है तो आ जाता है उनकी इनसे प्रेम होता है,
1: और
0: लेकिन बाद में
1: ये शब्द भी अमानुष
0: अमानुष
1: जो
0: बना के छोड़ा। अमानुष
1: जी
0: मतलब अभी भी लोग सोचते हैं अमानुष क्या है, लेकिन अमानुष वही जो क्रूर व्यक्ति
1: जी
0: हो जो
1: जी
0: अपना जानवरों जैसा व्यवहार करता हो, बहुत कठिन हो, उसको बोलते हैं।
2: अमानुष जो फिल्म का टाइटल है उस पर मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, और बहुत ही एक रोचक प्रसंग मुझे याद आ गया है अमानुष शब्द को लेकर के। क्योंकि मैं परिचित रहा हूँ कमलेश्वर जी से,
1: जी
2: और उनका भी लेखन इस फिल्म में रहा है अमानुष में, और शक्ति सामंत साहब ने यह फिल्म बनाई थी, तो मुझे उनकी एक मेमोरी याद आ रही है इस वक्त कमलेश्वर जी की, और उन्होंने मुझे बताया भी था, और जब उनसे जिक्र होता था काफ़ी फिल्मों पर चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया था कि कैसे इस शब्द को लेकर के एक मंथन हुआ था, एक बहस हुई कि क्या हिंदी वाले, हिंदी के दर्शक अमानुष शब्द को क्या ठीक से समझ पाएंगे, और ये क्या बॉक्स ऑफिस पर, जो एक मासी एक्टर का अपना एक इमेज है वहाँ,
1: जी
2: क्या बॉक्स ऑफिस में यह शब्द उतना पॉपुलर हो पाएगा, लोग क्या देखने आएंगे,
1: और नायक की छवि से इसे जोड़ पाएंगे या
2: नायक की
1: नहीं।
2: छवि से जोड़ पाएंगे, जो
1: जी
2: सत्यजीत रे ने नायक बनाई थी, इतनी ऐसी एक्टिंग है उस फिल्म में उत्तम
0: असल
2: कुमार
0: में
2: जी
0: इनका
2: की,
0: जो है उसके अंदर एक
2: है
0: शराबी, एक ऐसा व्यक्ति है
2: ना।
0: जो दिल का बड़ा अच्छा है लेकिन वो शराबी बन गया बहुत ज्यादा, उसका बहुत संपन्न परिवार होता था, मधुसूदन उसका नाम है, मधु जिसको बोलते हैं, और शर्मिला टैगोर रेखा की भूमिका में है, रेखा है
1: जी
0: वो, तो इनका जो आपस का प्रेम है बहुत अच्छा दिखाया है, उसमें नफरत भी है, प्रेम भी है, हमदर्दी भी है, एक दूसरे से दूर होते हुए पास होते हुए हो रहे हैं,
1: जी
0: तो बहुत अच्छा मानुष में जो चित्रण किया था। और कमलेश्वर ने उनकी खाली इसी की नहीं, और भी फिल्मों की कथा उन्होंने लिखी,
2: हाँ लिखिए लिखिए
0: कमलेश्वर जो है उनके साथ इतने पसंद बन गए थे कि बहुत पसंद आते थे उत्तम कुमार को, और जो फिल्में बाद में जो भी आई उसकी पटकथा भी हिंदी में,
1: जी
0: जो भी फिल्में आई वो कमलेश्वर ने लिखी,
1: जी
0: तो
1: यानी
0: ये तो
1: ये गीत हमें
0: ये गीत
1: बहुत
0: तो
1: सारी कहानियां
0: बहुत
1: एक
0: ही
1: साथ
0: सारी
1: देता
0: कहानियां
1: है।
0: जोड़ता
1: तो
0: है।
1: मैं
2: उसमें
1: जी
2: यही जोड़ना चाह रहा था कि अमानुष शब्द को रखा गया सोच समझ करके, एक चुनौती ली गई
1: जी बिल्कुल
2: कि ये नाम रखकर देखते हैं वाकई कितना पॉपुलर होता है, और ये वाकई प्रयोग जो है सफल हो गया, और यह फिल्म बहुत पसंद की
0: अब
2: गई।
0: देखिए ना, वैसे दिल तोड़ने को लेकर बहुत गाने अलग तरह के, ऐसा कोई गाना नहीं मिलेगा कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा अमानुष बना के छोड़ा,
1: जी
0: तो ये
1: जी
0: जो गाना है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है
1: जी
0: अमानुष
1: तो
0: का।
1: ठीक है, हम आपकी पसंद का यही गाना अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में, और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं जाने माने फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव और प्रदीप सरदाना जी। तो संजीव जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, हम जब उत्तम कुमार का जिक्र करते हैं तो एक अभिनेता के तौर पर तो बहुत सारी बातें हम उनके बारे में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो नायक के साथ जननायक भी थे, क्योंकि वो जनता के दुख दर्द के साथ जुड़ते थे, वो औरों के बारे में सोचते थे, और सुभाष चंद्र बोस जी से भी उन्हें जोड़ा जाता है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि हमारे श्रोताओं के लिए आप पूरा एलोबरेट करें वो जो संपर्क है, वो जो सूत्र है उनके बीच का।
1: नहीं, जो जननायक वाली बात जो आपने कही है ना, जैसे प्रदीप जी ने जिक्र किया कि सन 1980 में जब उनका देहांत हुआ तो एक जन सैलाब उमड़ा था
0: जी।
1: तो वो जननायक का ही एक प्रभाव था। सन 1980 में तो मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ रहा था, तो मुझे तो वो तस्वीर नहीं मालूम, लेकिन एक फिल्म अध्येता होने के नाते, एक फिल्म समीक्षक होने के नाते, जो हम इतिहास के पन्नों में जब घुसते हैं, बहुत कुछ अध्ययन करते हैं, तो किसी भी फिल्म अभिनेता के बारे में, निर्देशक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करते हैं। तो उत्तम कुमार जी के बारे में जो एक जननायक वाली जो छवि है, वो जो हमें एक देखने को ये मिलता है कि वो

0: आम जनता से,
1: जी
0: आम जनता के दुख दर्द से बहुत ही जुड़ाव रखते थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत तरह के सामाजिक कार्य भी किए थे। आजादी मिलने से पहले की बात है, सन 1943 की बात है, जब आनंद मठ का जब मंचन होने वाला था उसके लिए उन्होंने आर्थिक सहयोग किया था। तो समाज सेवा, संस्कृति और साहित्य को लेकर के उनमें में उनके भीतर कैसा एक प्रेम था, लगाव था, वहीं से समझा जा सकता है।
1: जी।
0: उसके बाद फिर बंगाल में बहुत तरह की सामाजिक समस्याएं आई। 1978 की बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उस वक्त उन्होंने सामाजिक कार्य किए, पैसे इकट्ठे किए और तत्कालीन मुख्यमंत्री के राहत

0: जारी रखी।
1: जी
0: इसके अलावा कुछ और काम उनके हैं जो कि उनके जननायक की छवि को उजागर करते हैं। जैसे उन्होंने शिल्पी संगठन बनाया था फिल्म आर्टिस्ट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म आर्टिस्ट जब उम्र दराज हो जाते हैं, उनको जब काम मिलना कम हो जाता है, वैसी स्थिति में उनके पास आर्थिक स्रोत कम हो जाते हैं।
1: जी
0: वहां पर उन्होंने एक संगठन के माध्यम से उन सभी कलाकारों को, जरूरतमंद कलाकारों की मदद के लिए काम किया, पैसे इकट्ठे किए, उन सब तक पैसे पहुंचाते थे। इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट का आयोजन भी कराया था एक मदद के लिए, है ना, जिसमें वो खुद कैप्टन बने थे पश्चिम बंगाल से
1: जी।
0: और मुंबई से कैप्टन बने थे दिलीप कुमार साहब। इस तरह के कई सारे काम करते थे। लेकिन एक जो सबसे दिलचस्प है वाकया, वो ये है कि वो मुरमुरे के बड़े शौकीन थे। मुरमुरे के बड़े शौकीन थे और पकौड़े जो होते हैं ना, खाने वाली चीजें, पकौड़े जो लोकेशन पर, वो सबको वो मुरमुरे और पकौड़े खिलाते थे। और उनका जो मानना था ये कि जो छोटा आर्टिस्ट है या कोई बड़ा डायरेक्टर है, उन सबको वो अपनी तरफ से ये खाने की चीजें वितरित करवाते थे, उनको देते थे। और उनके मन में एक ये भाव था कि कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, एक अभिनेता सिल्वर स्क्रीन के एक बड़े नायक होने के साथ साथ सिल्वर स्क्रीन के पीछे की जो उनकी एक छवि है कि आम जनता से जुड़ाव का, सामाजिक कार्य का, उसने उनको एक जननायक की छवि प्रदान की।
1: जी, और इंडियन नेशनल आर्मी के लिए भी वो फंड देते थे, आर्थिक मदद करते थे।
0: इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो उन्होंने गुप्त दान बहुत किए थे, गुप्त कार्य बहुत करते थे
1: जी।
0: ऐसे काम जिनको लेकर के पब्लिक में मैसेज जाना बहुत जरूरी नहीं है। अगर हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो पब्लिक में ये जाना बहुत जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े समाज सेवी है, बहुत बड़े सामाजिक नायक है, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की छवि भी उन्होंने बनाई थी और गुप्त दान के जरिए जो आम लोगों तक उनकी सहायता पहुंचती थी, इससे भी उनकी एक जननायक की छवि बनी थी।
2: जो 1971 की जो वार थी उसमें उन्होंने सेना के लिए बहुत पैसा कलेक्ट किया, उनके परिवार के लिए जो शहीद हो गए थे उनके लिए, उनके कार्यक्रम भी किए, उसके लिए अपनी जेब से भी बहुत दिया
1: जी।
2: तो ये बड़ी बात थी। और दूसरा जो आनंद मठ का बता रहे थे राशि, उसके अंदर जो मेरी जानकारी है 5,000 रुपए उन्होंने उस समय दिए थे उसके लिए, तो बहुत बड़ी राशि थी।
1: जी जी, प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगी, 1950 से 70 के दशक के दौरान जब समाज में बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस की ये बात है, तब ऐसा कहा जाता है कि उत्तम कुमार की फिल्मों ने बंगाली अस्मिता और मध्यम वर्गीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने फिल्में भी वो की जो सामाजिक मुद्दों को उजागर करती थी और इस तरह से भी एक सॉफ्ट स्किल के माध्यम से उन्होंने लोगों में एक तरह की क्रांति जगाई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल आपकी सही बात है कि उन्होंने इस तरह की फिल्में करते रहे, उनकी चाहिए सामाजिक उद्देश्यों को लेकर हो, खाली देशभक्ति को लेकर ना हो, लेकिन समाज में जो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो बदलाव आए और जो जिस तरह भारत में तरक्की शुरू की, उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी किस तरह की फिल्में बनाई और साथ ही एंटरटेनमेंट भी किया, क्योंकि एक बड़ा एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था। बंगाल तो बहुत ज्यादा प्रभावित था स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि बिल्कुल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था, उधर कुछ लोग बांग्लादेश में चले गए, कुछ इधर आ गए, तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहुत परिवार बिछड़ गए थे। तो इन्होंने मनोरंजन को भी बहुत ज्यादा दिया, जिस तरह राज कपूर ने 1951 में आवारा फिल्म बनाई, तो रूस में इसलिए चली कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था कि लोग उदास थे, निराशा में जी रहे थे, तो इसलिए इन्होंने भी ऐसी फिल्में की जो लोगों को एंटरटेनमेंट करें, उनको उभारें, उनको नया संदेश दें, नया जीवन दें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो दें। तो बहुत बड़ा था। उत्तम कुमार की कितनी ही बात करें, एक बात याद करते हैं 10 बात याद आ जाती है। अब ये बोल रहे तो मुझे कई बात याद आ जाती है बोलते बोलते, वैसे याद आ जाती है। एक ऐसा अभिनेता जो महानायक रहा, तो उसको आप देखिए वहां के लोगों ने, बंगाल ने बहुत वो किया, विदेशों में भी उनकी कुछ फिल्में चली, रूस में भी चली और जगह भी चली, नायक फिल्म भी बहुत जगह उसको अवार्ड मिले, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी गई और उसको फिल्म को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनको इस तरह का सम्मान नहीं मिल सका, वो भी इस बात के लिए परेशान से रहते थे कि मैं भी पूरे विश्व में छाऊं, बंगाली सत्यजीत रे के माध्यम से या अपनी, और सत्यजीत रे की फिल्में तो पूरे विश्व में जाती जाती थी, कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं होता था जहां उनकी फिल्म नहीं जाती थी। कि उन्होंने तो शुरुआत की अपनी जब पहली फिल्म से, पाथेर पंचाली से ही, उसी से उन्होंने विश्व में नाम कमाना शुरू कर दिया था, तो अपनी पहली फिल्म से हो गई, तो इसलिए उनकी जो भी फिल्म बनती थी वहां जाती थी। लेकिन वो भी चाहते थे कि मैं हिंदी सिनेमा में जाऊं, उससे भी मेरा नाम हो, मेरी पहचान बने, की अभिनेता की ख्वाहिश होती है ना। हम भी मान लो लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी पाठक सभी वर्ग में हों, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सब जगह सुने जाएं, सब जगह देखे जाएं। तो अभिनेता की तो बहुत बड़ी चाहत होती है कि मैं इतना काम कर रहा हूं, जब उसको एक जगह इतनी बड़ी मान्यता मिल जाती है वो चाहता है। आप ये देखिए उनको, हालांकि राज कपूर ने एक बार कहा कि आप मेरी फिल्म में काम कीजिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत

0: की उन्होंने मना कर दिया। राज कपूर ने सुचित्रा सेन से भी कहा जो सबसे फिल्म की, लेकिन सुचित्रा सेन क्या थी, वो ऐसे व्यक्ति को पसंद करती थी जो बुद्धिमता वाला हो, बातचीत में जिसकी मजबूती हो, उसका कोई आकर्षण शरीर का या उसके अंदाज, वो उनको पसंद नहीं थे। राज कपूर उनको आमंत्रित करने गए, उनको घर पे मेरी फिल्म में काम कीजिए, जैसे वो बैठी उनके पैरों में जाके बैठ के उनको फूल दिया। सुचित्रा सेन को पसंद नहीं आया तो उन्होंने भी राज कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया। लेकिन बाद में राज कपूर को जब लगा, जब उनकी संगम पिक्चर के लिए उन्होंने कहा था, और राज कपूर ने उत्तम कुमार को, जो राजेंद्र कुमार का रोल था, वो सबसे पहले उन्होंने उत्तम कुमार को ऑफर किया था
1: जी।
0: तो लेकिन उनको लगा कि पता नहीं मैं अभी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब 1964 में वो फिल्म रिलीज हुई, राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म जिसकी शूटिंग विदेशों में पहली बार की, तो इतनी सुपरहिट हो गई और राजेंद्र कुमार और राज कपूर की जोड़ी साथ में विजयंती माला एकदम हो गई, तब उनको लगा रही है तो मैंने शायद गलती करी तो मुझे कोई फिल्म करनी चाहिए। उसी का नतीजा था कि उन्होंने 1967 में खुद प्रोड्यूसर बने, विजयंती माला को हीरोइन लिया। वैजयंती माला से मेरी कितनी बार बात होती है तो जब भी कहती है उस बात का जरूर जिक्र करती हैं कि वो फिल्म चली नहीं, लेकिन उत्तम कुमार ने बहुत ही दिल से बनाया था, बहुत पैसा लगाया उस समय के हिसाब से, और कलर फिल्म थी पहली वो, तो उन्होंने वो बनाया, तो तब वो फिल्म 1967 में आई छोटी सी मुलाकात, और वो इतनी मशहूर हो गई। वैजयंती माला के साथ उनकी मतलब फिल्म चाहे बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो गई और वो कर्ज में डूब गए, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उस फिल्म को आज भी हम याद करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी।
1: तो पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं संजीव श्रीवास्तव, आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, लेखक हैं, और इस बार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक के तौर पर आप ही को प्रदान किया जा रहा है, स्वर्ण कमल पुरस्कार। संजीव जी शुरुआत में रह गया, लेकिन मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस उपलब्धि के लिए, आपकी लेखनी यूं ही चलती रहे और बहुत सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त हों।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तमाम श्रोताओं को, और साथ में इस पुरस्कार के लिए मेरा चयन करने के लिए जूरी के सदस्य को और सभी चाहने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, और पिछले 50 वर्षों से हम एक सक्रिय मीडियाकर्मी के तौर पर अलग अलग भूमिकाओं में आपको देखते रहे हैं। तो संजीव जी, अब मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी,
0: मुझे भी बधाई दीजिए 50 साल होने की।
1: जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको।
0: एक साल से सेलिब्रेशन चल रहा है मेरा अर्धशताब्दी का।
1: जी, इस अर्धशताब्दी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
2: नीलम जी, मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि प्रदीप जी इतने बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं, 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं करीब 25 साल से कर रहा हूँ
1: जी,
2: बिल्कुल आधे का फर्क है। आज उनके साथ मैं बैठकर वार्ता कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है
1: जी। तो प्रदीप जी, आपका ये जोश जो है दमखम यूं ही बना रहे, हम ये कामना करते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम हम आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे जी। तो संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी, उत्तम कुमार जी की बहुत सारी फिल्में, बांग्ला फिल्में जो हिट रही, उनका रीमेक बाद में बॉलीवुड में बना, यानी हिंदी फिल्मों के रूप में हमारे सामने आया, और जो भूमिकाएं उत्तम कुमार ने निभाई थी वो भूमिकाएं बाद में हिंदी फिल्मों में देवानंद साहब ने भी निभाई, फिर दिलीप कुमार साहब भी उसमें रहे और अपने समय के बहुत ही दिग्गज अभिनेता रहे। मेरा एक तो सवाल ये कि उनकी फिल्मों के रीमेक क्यों बने, दूसरा ये कि क्या वजह थी कि वो भूमिकाएं खुद उत्तम कुमार ने नहीं निभाई बल्कि हमारे हिंदी फिल्म कलाकार जो थे बाद में उन्होंने निभाई।
2: इसकी वजह तो नहीं कही जा सकती कि उस समय के डायरेक्टर, उस समय के प्रोड्यूसर और हिंदी में जिस अभिनेता की जो छवि बन चुकी है
1: जी,
2: वो भी वजह होती है, साथ में कलाकार के पास क्या समय है, वो किस तरह के काम में और इन्वॉल्व है, दूसरी फिल्मों में इन्वॉल्व है, टाइमिंग, ये सब भी बड़े फैक्टर होते हैं
1: जी।
2: लेकिन कुछ बड़ी फिल्में हैं जो कि बांग्ला में पहले बनी और फिर उनका हिंदी में रीमेक हुआ, और जो हिंदी में रीमेक हुआ वे सारी फिल्में
1: जी
2: बहुत ही पसंद की गई, बहुत ही चर्चित वो फिल्में हैं। जैसे कि अगर मैं एक जिक्र करूं, साहब बीबी और गुलाम
1: जी,
2: ये बांग्ला में बनी जिसमें खुद उत्तम कुमार जी थे, लेकिन जब उसका हिंदी रीमेक बना
1: जी,
2: जो उसमें बांग्ला में भी वो भूतनाथ बने थे, और जब हिंदी रीमेक हुआ तो उसमें गुरुदत्त साहब ने उसमें भूतनाथ का रोल किया
1: जी।
2: इसके अलावा और भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि बांग्ला में सवार ओपोरे नाम की एक फिल्म बनी 1955 में। इसमें क्या है कि एक बेसिकली ये क्राइम थ्रिलर था जिसमें एक अपने बेगुनाह पिता को बचाने के लिए बेटा प्रयास करता है, और तो ये कहानी थी, और ये कहानी हिंदी में बनी काला पानी नाम से जिसमें देवानंद साहब थे। इसके अलावा भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि अग्नि परीक्षा जिसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं, अग्नि परीक्षा का हिंदी रीमेक बना था छोटी सी मुलाकात जिसमें वो खुद ही थे
1: जी।
2: लेकिन इसके अलावा दूसरी फिल्म है जैसे लाल पत्थर बनी थी, लाल पत्थर भी बांग्ला में बनी,
0: आशापूर देवी के उस पर थी
2: हाँ
1: जी,
0: उपन्यास पर
2: जी, बिल्कुल बिल्कुल।

0: पत्थर बनी थी, तो लाल पत्थर जब हिंदी में बनी थी उसमें राजकुमार एक्टर थे, और लाल पत्थर प्रसिद्ध फिल्म हुई अपने आप में, बहुत ही क्लासिक फिल्म है,
1: जी
0: बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, बहुत पसंद की गई थी। बांग्ला में एक फिल्म बनी थी भ्रांति विलास, वो हास्य बोध की फिल्म थी,
1: जी
0: उसमें वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर होते हैं, और जब हिंदी रीमेक उसका जब बना,
1: तो चुपके चुपके
0: ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाई वो
1: जी
0: फिल्म जिसका नाम चुपके चुपके है, और
1: जी
0: धर्मेंद्र उसमें
1: परिमल त्रिपाठी का
0: परिमल
1: किरदार
0: त्रिपाठी
1: जो
0: का
1: है
0: रोल में आते हैं,
1: वो
0: और
1: सबके
0: धर्मेंद्र की वो
1: नजदीक।
0: बहुत ही क्लासिक फिल्म है। धर्मेंद्र की मुझे लगता है मेरी चॉइस में अगर अगर हम उनकी हम पांच पसंदीदा फिल्में अगर एक साथ रखते हैं तो उसमें
1: जी
0: चुपके चुपके को भी हम शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फिल्में हैं। एक फिल्म आई थी 1975 में, हम इसे ओ सखा, इसका जब हिंदी रीमेक बना वो बना बेमिसाल नाम से,
1: जी
0: उसमें डॉक्टर के दोस्त अमिताभ बच्चन उसमें बनते हैं, विनोद मेहरा उस फिल्म में डॉक्टर बने हैं।
1: जी
0: तो अमिताभ बच्चन का जो रोल था वो रोल बांग्ला फिल्म में उत्तम
1: उत्तम
0: कुमार
1: कुमार
0: जी ने निभाया था।
1: जी, और अंगूर तो बहुत
0: अंगूर,
1: चर्चित फिल्म
0: गुलजार
1: थी
0: साहब
1: जी
0: की अंगूर,
1: जी
0: वो भी एक तरह से बांग्ला की ही रीमेक थी। लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर हम ये
2: वैसे
0: देखते
2: वो
0: हैं,
2: शेक्सपियर के उस पे थी
0: जी जी
1: कॉमेडी
2: जी
1: ऑफ
2: कॉमेडी ऑफ
1: एरर्स
2: एरर्स
1: जी
2: पे,
1: जी
2: लेकिन इसको बंगला में बहुत चली वो।
0: इसके अलावा देखिए अमर प्रेम, अमर प्रेम को लेकर से बहुत सारी कहानियां हैं,
1: जी
0: राजेश खन्ना उसमें आते हैं, और इसमें राजेश खन्ना को तो कहा गया बाकायदा, शक्ति सामंत साहब ने बाकायदा कहा कि आप जब बांग्ला में जो बनी है उसमें जो उत्तम कुमार जी ने जो अभिनय किया है उसको आप देखिए और उसको फॉलो करने की भी कोशिश करिए।
2: वैसे ही धोती कुर्ता बांधा उन्होंने,
0: धोती
2: जैसे
0: कुर्ता
2: उसमें बांधा
0: जी,
2: था।
0: वैसे ही धोती कुर्ता पहना, और राजेश खन्ना अपने लिए बहुत ही गौरवान्वित, उन्होंने एक
1: जी
0: भाव व्यक्त किया कि वाकई मुझे उत्तम कुमार जी की पोशाक को धारण करने का मौका मिला है, उनकी भूमिका को निभाने का मौका मिला है। तो राजेश खन्ना जैसे स्टार समझिए उस वक्त, जिस
1: जी
0: समय अमर प्रेम फिल्म आती है उस समय राजेश खन्ना का क्या सितारा बुलंद था।
1: जी
2: और
0: मैंने
2: इसका
0: देव
2: इसका ये बता दूं, इसका जो गाना है ना चिंगारी कोई भड़के,
0: जी
2: वो भी हुगली में वहीं पिक्चराइज किया गया, उसी जगह जहां वो
1: जी
2: किया गया। और
1: मतलब
2: शिवया टैगोर बता रही थी कि
1: जी
2: वहां इतना पानी सड़ चुका था कि बड़ी बदबू आती थी, और हमको ऐसा लगता फिल्म में ऐसा दिखा रहा था, बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है। कहती हमने उसमें भी काम किया, 5 दिन हमने उस गाने को शूट किया वहां पर,
1: जी
2: उसके
1: ये
2: अंदर
1: उत्तम कुमार की छवि का प्रभाव था
2: प्रभाव था
1: उस समय।
0: प्रभाव था।
1: जी
0: तो कहने का आशय यह है कि उतने बड़े स्टार जो उस वक्त के इतने बड़े कलाकार थे, उन्होंने भी उत्तम कुमार की निभाई हुई भूमिका को हिंदी में निभाया और
1: जी
0: बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया।
1: जी
0: राजेश खन्ना तो कहते थे कि अगर मैं 50% भी उनके भावों को ठीक से व्यक्त कर पाया तो शायद मेरी वो बहुत बड़ी सफलता होगी।
1: प्रदीप जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम जब कहते हैं उत्तम कुमार तो एक छवि हमारे सामने आती है, एक तो ये छवि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संजीव कुमार से बहुत मिलती जुलती है, तो क्या इसका कुछ नकारात्मक पहलू रहा कि उत्तम कुमार को अपनी एक इमेज बनाने में समय लगा? और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये नाम जो उनसे जुड़ा हुआ है, इस नाम के पीछे की कहानी क्या है?
2: देखिए पीछे की कहानी यह है कि इनके पिता ने इनका नाम अरुण कुमार रखा,
1: जी
2: तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय, अरुण कुमार चतुर्थी जैसे आप जानते हैं, दोनों
1: जी
2: बोले जाते हैं, तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय इनका नाम रहा। इनके दो भाई और रहे, एक वरुण कुमार और एक तरुण कुमार। तरुण
1: जी
2: कुमार तो फिल्मों में रहे, उन्होंने तो 500 से ज्यादा फिल्में की, इनके छोटे भाई थे 5 साल छोटे थे इनसे,
1: जी
2: और उन्होंने वरुण ने कोई फिल्में नहीं की। और जो इसकी बात है तो इन्होंने जब शुरुआत की, सबसे पहले जो इनकी फिल्म थी 1948 में दृष्टिदान,
1: जी
2: दृष्टिदान, तो दृष्टिदान के अंदर ये अरुण कुमार के नाम से,
1: जी
2: तो वो फिल्म नहीं चली। तो इनके साथ ऐसी हुआ, जैसे 5 साल अमिताभ बच्चन ने बहुत संघर्ष किया ना, सारी फिल्में फ्लॉप होती रही,
1: जी
2: उसके बाद जंजीर से चले वो, 69 में उनकी पहली फिल्म आई सात हिंदुस्तानी, 1973 में जंजीर आई, उससे चले। इनका भी ठीक ऐसे ही रहा कि 5 साल इन्होंने खूब संघर्ष किया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने नाम नहीं बदले, इन्होंने नाम बदले। उसके बाद इन्होंने अपना नाम अनूप कुमार के नाम से फिल्में की, फिर इन्होंने उत्तम चटर्जी के नाम से फिल्में की, उसके बाद जाकर इनका जो है ये नाम आया उत्तम कुमार, उसके बाद इनकी गाड़ी चल निकली। उसके बाद जो इनकी जो बसु परिवार फिल्म आई थी वो सबसे ज्यादा चली, बसु परिवार। उसके बाद तो बस फिर अग्नि परीक्षा और ये सब सारी फिल्में ऐसे चलती रही, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर तो पूरा जो भी समय था वो लगातार उत्तम कुमार का था। आप देखिए इतनी फिल्में करना और उसमें से अधिकतर फिल्में जुबली होना और इतनी सफलता मिलना, इतनी लोकप्रियता मिलना, लगातार जो है सब करना, ये बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह महानायक के रूप में मुंबई इंडस्ट्री के अंदर, मैं उसको बॉलीवुड कहना नहीं चाहता, मैं उसको हिंदी सिनेमा हिंदी फिल्म उद्योग ही कहूंगा, बॉलीवुड की निकल पे बॉलीवुड मुझे नहीं जमता। तो उसके अंदर जिस तरह दिलीप कुमार को महानायक कहते रहे, या जाके अमिताभ बच्चन को महानायक कहते हैं, उसी तरह उत्तम कुमार अकेले महानायक रहे वहां पर, अभी भी वही महानायक है, उनकी जगह कोई नहीं ले सका। चाहे कई लोगों ने हिंदी के अभिनेता भी वहां गए, उन्होंने भी फिल्में की, विश्वजीत वीदर भी करते रहे, वहां भी करते रहे, मिथुन चक्रवर्ती भी जुड़े रहे तो दोनों सिनेमा से, और भी बहुत सारे जुड़े रहे, विश्वजीत के पुत्र भी जुड़े रहे, इनके पोते भी जो है उत्तम कुमार के, वो भी अब कर रहे हैं फिल्म।

0: कि बाकी और एक बेटा था, उनकी डेथ होगी बाद में, फिर बाद में उसने किया, तो वो भी इस तरह सिनेमा कर रहा है। इनका असल में परिवार जो था वो इनके जो फादर थे, हमारे सिनेमा था इंदिरा सिनेमा,
1: जी
0: उसके अंदर प्रोजेक्टर चलाते थे, तो उसी को देखकर इनको फिल्में करने का मन किया। और लेकिन इनका बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था, तो वो थिएटर भी साथ साथ करते रहते थे, तो उससे क्योंकि ये सिनेमा तो कर नहीं सकते थे, आप सिनेमा देख कर, यानी कि आप सिनेमा में आपको काम मिल जाएगा, तो
1: जी
0: मैं थिएटर में काम करना शुरू किया। तो फिर थिएटर से जो है इनको धीरे धीरे वो हुआ, फिर 1948 में इनकी दृष्टिदान आई, और फिर जाके इनकी पिक्चर 1953 के अंदर इनकी चलनी शुरू हुई, और फिर देखिए वो तो इतिहास बन गया उत्तम कुमार, आज हम
1: जी
0: याद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि इतने साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तम कुमार का जिक्र करके
1: जी
0: उनको दोबारा से लाइव कर दिया, जो उनको
1: जी
0: भूल भी रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, उनको
1: जी
0: जब पुरानी किसी सरकार ने पद्म पुरस्कार नहीं दिए, चाहे दादा साहब फाल्के नहीं दिया, लेकिन ये याद करके सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज देखिए सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं उत्तम कुमार, कि उत्तम कुमार कौन है, नई
1: जी
0: पीढ़ी बिल्कुल नहीं जानती, मेरे परिवार में उत्तम कुमार कौन है, क्योंकि उत्तम कुमार एक तो भगवान में ज्यादा रहे, यहाँ जैसे बताया कि उनकी फिल्में आई, 15 फिल्में की उन्होंने,
1: जी
0: और जैसे
1: और
0: बताया
1: संजीव कुमार जी से चेहरा
0: संजीव कुमार
1: मिलता
0: साहब,
1: था
0: देखिए जो
1: तो
0: आज भी
1: उनसे भी
0: फिल्म
1: जोड़ते
0: है
1: हैं
0: वो
1: लोग।
0: भी कमलेश्वर ने लिखी थी, और
1: जी
0: कमलेश्वर पहले चाहते थे कि इसके अंदर इन्हीं को ले, उत्तम कुमार को। अब आपने बात की मुझे याद आ गया,
1: जी
0: जो कमलेश्वर जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे बहुत लंबे सालों तक, तो उन्होंने ये कहा कि हम उनको लेना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हो
1: किस
0: रहे।
1: फिल्म में?
0: आंधी फिल्म में,
1: आंधी में।
0: नाइनटीन
1: जी
0: सेवेंटी थ्री में जब ये
1: जी
0: फिल्म हुई, तो उत्तम संजीव कुमार का जो रोल था वो चाहते थे वही करें, तो
1: सुचित्रा सेन के
0: सुचित्रा सेन
1: साथ।
0: इसके अंदर थी, और
1: जी
0: सुचित्रा सेन उनकी फेवरेट हीरोइन थी, दोनों बहुत अच्छी उनकी जोड़ी थी, लेकिन उस समय उन्होंने वो फिल्म नहीं की इस तरह का।
1: जी
0: तो लेकिन तो आप देखिए वो आंधी फिल्म है, वो भी इतनी चली संजीव कुमार की, संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उसके अंदर मिला, और
1: जी
0: शर्मा टैगोर भी उसको बहुत याद करती हैं, क्योंकि शर्मा टैगोर के साथ भी इनकी अच्छी जोड़ी थी, और सुचित्रा सेन के साथ भी इनकी अच्छी रही, तो उनकी दो अभिनेत्रियाँ तो उनकी बहुत ज़्यादा रही जो इनकी इस तरह। बाकी सुप्रिया देवी जो उनके साथ
1: जी
0: बाद में जीवन में आई, पहले उन्होंने शादी की गौरी देवी से, तो वो लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाई, 1963 में इनका अलगाव हो गया था दोनों का,
1: जी
0: फिर ये इनके साथ रहने लगे, उनके साथ पूरा तलाक नहीं हुआ था, लेकिन वो अंत तक 1980 तक इनके साथ रही। तो
1: जी
0: इनका जो परिवार है वो एक अपना एक अलग तरह का था, वैसे दिल खोल परिवार था, मतलब वो इतना संपन्न भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था संयुक्त परिवार था, तो एक ने कमाया, दूसरे ने ज़्यादा कमाया, तीसरे ने कम कमाया,
1: जी
0: तो इस तरह आता था कि बहुत तो आनंद में रहते थे, तो समाज सेवा में भी सक्रिय रहते थे, सिनेमा में, रंगमंच में बहुत काम किया। रंगमंच का काम तो सामने आ नहीं पाता जो पुराने लोगों
1: जी
0: ने किया, हम पृथ्वीराज कपूर को याद करते हैं, कोलकाता में उन्होंने इतना किया, शशि कपूर ने भी जाकर किया, तो
1: और उस
0: जेनिफर,
1: समय रंगमंच जन जागरण का कार्य
0: हाँ
1: करता
0: उनकी
1: था।
0: जेनिफर जो उनकी पत्नी रही, वो भी
1: जी
0: उनको शशि कपूर को वहीं मिली, क्योंकि वो थिएटर करती थी उन अपने
1: जी
0: फादर के साथ, और शशि कपूर अपने फादर पृथ्वीराज कपूर के साथ करती थी। तो थिएटर का जो देखिए कोलकाता के अंदर सबसे बड़ी बात है, रंगमंच सिनेमा और कला का जो जुनून मैंने वहाँ देखा है, मैं तो
1: जी
0: अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1985 से कवर कर रहा हूँ, मैं जब भी वहाँ जाता था तो लोगों के पास कपड़े फटे हुए हों, चप्पल टूटी हुई हो, लेकिन फिल्म देखने के लिए बड़े शौक से आते थे टिकट खरीद कर, क्योंकि वो जो रंगमंच और ये सब जो है उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, रंगमंच के अंदर
1: जी
0: उत्तम कुमार के योगदान को भी नहीं बुलाया, तभी जो है आप ये देखिए यहाँ के लोग हम वहाँ जाके सिनेमा करते थे, न्यू थिएटर वहाँ रहा जिसने इतनी फिल्में बनाई, बड़े बड़े एक्टर वहीं जाके काम करते थे। तो
1: जी
0: इसलिए कोलकाता जो पश्चिम बंगाल है, खासतौर कोलकाता तो खासतौर से कहेंगे, वो तो बिल्कुल कला संस्कृति और सिनेमा
1: सांस्कृतिक
0: की
1: राजधानी भी कहा
0: राजधानी है
1: जाता था।
0: संस्कृति।
1: जी बिल्कुल
2: एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें,
1: जी
2: और प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छी बात शुरुआत में कही थी कि उनकी उपेक्षा बहुत हुई, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया मन की बात में, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उत्तम कुमार जी कौन थे,
1: जी
2: ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मन की बात का, इस बारे में हमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ जो मैं चाहता हूँ उसे मेंशन करूँ, वो ये कि मन की बात में इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने फिल्म कलाकारों को याद किया है, और खास तौर पर अगर याद करें साल 2024 के अंत में जब राज कपूर की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी,
1: जी
2: और मोहम्मद रफी साहब की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तपन सिन्हा की, इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने काबुलीवाला और सगीना महतो जैसी फिल्म बनाई
1: जी
2: हिंदी और बांग्ला में, उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी, तेलुगु फिल्म के एक बहुत बड़े कलाकार थे नागेश्वर राव,
1: जी
2: उनकी जन्म शताब्दी, उन सबको उन्होंने,
0: भूपेन
2: हजारिका
0: हजारिका को भी
2: जी
0: याद
2: जी
0: किया।
2: उन सबको उन्होंने मन की बात में याद किया, बहुत शिद्दत से याद किया है, और सिनेमा को लेकर के उनका एक दृष्टिकोण है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात जब हम करते हैं
1: जी
2: तो सिनेमा हमारा जो है उसमें एक बहुत बड़ा झंडा की तरह दिखाई देता है, कि
1: जी
2: सिनेमा कैसे पूरे भारत को जोड़ता है
1: जी
2: और दुनिया में हमारी भाषा को पहुंचाता है, इस बात को उन्होंने मेंशन किया है। और खास तौर पर राज कपूर के लिए उन्होंने ये कहा कि जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की
1: जी
2: उसको उन्होंने दुनिया के मंच पर पहुंचाया।
1: बिल्कुल।

0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारतीय फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसकी भी एक बड़ी भूमिका है, और साथ ही जो हमारी कला और संस्कृति का पूरी दुनिया में परचम लहराता है।
1: राज कपूर तो ऐसे हैं, उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री का पहला परिवार है
0: जी,
1: जिसको राज कपूर परिवार, कपूर परिवार, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने सब इकट्ठे सदस्यों को अपने घर पर बुलाया, उनसे चर्चा की, उन्होंने वो ही सॉफ्ट पावर की चर्चा
0: बिल्कुल कई पीढ़ियों का दृष्टिकोण उसमें एक साथ दिखाई देता है।
1: राज कपूर भी बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि जिस तरह सत्यजीत रे और यहाँ राज कपूर दो हमारे ऐसे हैं भारतीय सिनेमा के जो फिल्मकार बड़े जिनको बुलाया जा सकता, दोनों ने अभिनय, सत्यजीत रे उस तरह के, राज कपूर ने तो खैर अभिनय भी किया, दोनों में उनका इस तरह का वो रहा, तो वो जो उनको कभी बुला ही सकते, उनकी अब जन्म शताब्दी अब देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, पिछले 3-4 साल से हम अलग अलग लोगों की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, उत्तम कुमार की, वहाँ संगीतकार के रूप में हमने अभी रवि और ओपी नैयर है उनकी जन्म शताब्दी मनाई है, अभी आगे भी हम राजकुमार की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, प्रेमनाथ की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, उससे पहले भी हम लगातार शैलेंद्र, गुरुदत्त, देवानंद, राज कपूर, देवानंद, इन सब की हम जो त्रिमूर्ति रही, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, तीनों की जन्म शताब्दी मनी मनाना, तो जन्म शताब्दी के बहाने इस तरह याद करना और उल्टा खासतौर से ऐसे लोगों को याद करना जिनका बहुत अच्छा उनका अतीत, बहुत इतना काम किया उन्होंने, अब जाके उनको लोग बुला रहे हैं, तो ये जन्म शताब्दी के बहाने और प्रधानमंत्री के कहने से तो इतना आगे हो गया कि हम सब इनको, हमने इसलिए इनको 3 तारीख को बहुत याद किया
0: जी, और नई पीढ़ी भी इनके बारे में अब जान रही है और विभिन्न माध्यम है हमारे पास जानने के, बहुत चर्चित नाम आपने लिए। मैं यहाँ संजीव जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम उत्तम कुमार जी का जिक्र कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि किस तरह से वो चाहे अपने नाटकों का मंचन हो या फिर वो अलग अलग इवेंट करते हो और उससे जो कलेक्शन है, फंड रेजिंग कार्यक्रम है, उनसे वो जन साधारण के लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए दान करते थे, और जैसे बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की बात कही तो वो हमेशा सजग रहते थे और उसमें अपनी ओर से योगदान करते थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, युवा पीढ़ी खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, जो लोकप्रिय चेहरे हैं, उनसे बहुत प्रेरित होती है और उनको बहुत फॉलो भी करती है, उनके जैसा अंदाज अपनाती है, उनके जैसा लाइफस्टाइल वो जीना चाहते हैं और कुछ कुछ चीजों की नकल भी करते हैं। ऐसे में जब ये चर्चित चेहरे जो हैं, प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, जब आगे बढ़कर और अपना जो कार्य क्षेत्र है उससे अलग हटकर कुछ करती है और समाज के प्रति योगदान करते हैं, ये गंभीरता का स्तर बनाए रखते हैं और लोगों से जुड़ना चाहते हैं, इसकी क्या भूमिका है, इससे कैसे हमारी युवा पीढ़ी को एक दिशा मिलती है?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मुझे लगता है युवा पीढ़ी को बहुत अच्छी दिशा मिलती है और जिनको नहीं मिलती है उन्हें दिशा हासिल करनी चाहिए ऐसे कार्यों को देख करके। उत्तम कुमार जी ने जिस तरह से काम किया, सामाजिक काम किए, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार हैं, सुनील दत्त साहब ने कितना सामाजिक काम किया था, ये हम लोग जानते हैं, उन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा मुझे लगता है कि जो विरासत उन्होंने खड़ी की, उस विरासत की कड़ी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है
0: जी।
2: वह विरासत की कड़ी चलती रहती है, एकदम से लुप्त प्राय नहीं होती। जैसे कि पिछले दिनों हमने एक बड़ी सेलिब्रिटी को देखा कोविड के दौर में, सोनू सूद को, उसका सामाजिक काम करते हुए
0: जी।
2: आज के दौर के हमारे एक बड़े गायक हैं अरिजीत सिंह, वो भी सामाजिक सेवा, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं
0: जी।
2: इस तरह की कई सारी पर्सनालिटीज हैं जिनको देख करके युवा पीढ़ी इंस्पायर्ड होती है। हाँ, यह ठीक है कि लाखों की संख्या में अगर फैंस होते हैं तो शायद सामाजिक कार्यों से इंस्पायर्ड होने वालों की संख्या शायद 10-20-25 ही होती है, जो कि उस काम को आगे बढ़ाती है
0: जी।
2: लेकिन वो कड़ी बनी रहती है। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी है कि आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दीबाजी में है। मैं भी कभी युवा था, जो आज के जेंजी युवा है उसी तरह से मैं भी कभी युवा था। लेकिन जो आज स्पीड दिखाई देती है कि एक बार में, एक ही झटके में, एक ही कम समय में बहुत सारी चीजें हासिल हो जाए, ये जो जल्दबाजी है उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है जरूर। लेकिन उसी भीड़ में एक दो लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो कि सामाजिक काम कर रहे हैं, तो उससे आशा की किरण चमकती है कि एकदम से सामाजिक कार्यों की विरासत जो है वो खत्म नहीं हुई है, इसलिए वहां पर हम आशान्वित होते हैं
0: जी
2: कि ये काम चल रहा है और चलता रहेगा आगे भी
0: जी। तो यानी हमारी जो चर्चित हस्तियां हैं, लगातार उन्हें स्वयं आगे बढ़कर इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए क्योंकि उनसे प्रेरित होते हैं लोग।
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारा ये कार्यक्रम सुनते सुनते अगर हमारे किसी युवा श्रोता के मन में ये बात आए कि उन्हें भी फिल्म क्रिटिक बनना है या फिल्म लेखन से जुड़ना है या वो पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो क्योंकि आप दोनों दिग्गज इस समय यहाँ हैं, तो मैं आपसे चलते चलते ये जरूर चाहूंगी कि आप हमारे युवा साथियों के लिए कोई एडवाइस यहाँ जरूर दें, वो कैसे आगे बढ़ें।
1: देखिए, आज तो एडवाइस देने की जरूरत ही नहीं है
0: जी।

0: सोशल मीडिया जब से आया है हर कोई क्रिटिक बन गया है।
1: जी
0: यूट्यूब पे देखिए कोई फिल्म नहीं आती वो हमसे पहले वो उसका रिव्यू कर देते हैं। कई लोग तो अभी उसका ट्रेलर एक्चुअली लॉन्च ही नहीं होता उससे पहले उसका रिव्यू कर देते
1: जी
0: हैं।
1: लेकिन बहुत
0: हमने क्या
1: सतही
0: किया
1: है ये
0: देखिए,
1: सब
0: हमने जिस
1: चीज़ें।
0: दौर में शुरू किया वो ऐसा दौर था 1974 में
1: जी
0: कि जब ये बहुत आप किसी से कोई आज तो आप वो ट्वीट कर देते हैं आप उनके बारे में जान लें, तब तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था।
1: जी
0: हम तो अमिताभ बच्चन से एक बार मिले तो हमें पता है कि हम अमिताभ बच्चन से घर पे जाके मिले दिल्ली में 1976 में उनके बर्थडे पे गए, या उनके पिताजी डॉक्टर हरवंश साहब बच्चन जो मेरे गुरु रहे हम
1: जी
0: तब भी उनसे मिलते थे इतने सालों से। तो हमें जो अमिताभ बच्चन बात बताते थे हमें पता ये बात कहीं जाने वाली नहीं है कि उनके मेरे बीच में बात हुई है। हम उसको
1: जी
0: जरूरी कल दें, परसों दें, तरसों दें, कभी भी दे देते थे। आज तो स्थिति ये है कि आप बात करके निकलिए तभी का तभी दीजिए, नहीं पता लगे वो एकदम आउट हो जाएगी। तो अब जो है हमने लेकिन हम देखिए उस समय जब मैं वी शांताराम से मिलता था, तारचरण बढ़ियाती से मिलता था, बी आर चोपड़ा चोपड़ा रामानंद सागर, तो उस समय
1: जी
0: के इतने दिग्गज फिल्मकार थे पुराने पुराने, तो इनसे बात करने का अलग आनंद आता था और अलग सुख मिलता था। हमसे वो खाली हम उनसे सलाह लेते थे। तारक बड़जात्या जी ने जब फिल्म मैंने प्यार किया बनाई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे उसका पोस्टर दिखाया, उसकी स्टूडियो में मुझे उसके रशेस दिखाए कि जरा
1: जी
0: बताइए कैसे हैं। उसके गाने दिल्ली में मुझे अपनी एम्बेसडर कार में सुनाए, जनपथ पे गाड़ी रोक कर जब हमने
1: जी
0: रिकॉर्डिंग कर कर आया गाने सुनिए। तो उस समय फिल्म समीक्षा की इतनी अहम भूमिका होती थी कि उसे सलाह ली जाती थी कि आप जानते हैं सिनेमा देखते हैं लोगों की नब्बी पहचानते हैं तो आप बताइए क्या है। हम आपके कौन जब लगी पहली बार तो उसमें जो हमारे और क्रिटिक्स से बड़े क्रिटिसाइज कर रहे थे, नहीं नहीं क्या फिल्म था चित्रा बनाया चलेगी नहीं यही नहीं। तो जो उसके यहाँ दिल्ली के जो के महावीर बड़जात्या थे वो उसके बाद भाग गए कि मेरे को पकड़ लेंगे क्या फिल्म बनाई है ये। तो मेरे पास फोन आया, मैं आप चिंता मत कीजिए ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है क्योंकि मैं आसपास के लोगों को देख रहा था बहुत एंजॉय कर रहे थे, मैं तो
1: जी
0: कर ही रहा था, मैं आसपास के लोगों को भी देखता हूँ तो उससे अंदाजा लग सकता है। तो फिल्म क्रिटिक बनिए बहुत अच्छी बात है लेकिन अच्छी आलोचना कीजिए। आजकल रास्ता सबके पास यूट्यूब के और सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया है, उससे भी कर सकते हैं,
1: जी
0: अखबार में भी और रेडियो में भी और टीवी में भी बहुत रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन उसको गंभीरता से लीजिए,
1: जी
0: जल्दबाजी अभी भी मत कीजिए। चाहे बेशक आप कर लें ये नहीं कि उसने क्या बोला मैंने क्या बोला उसको देखकर मैं बोल दूं, आप अपने दिमाग से बोलिए। हम आपके कौन के लिए सब लोग बोल रहे थे मैं भी बोल देता तो मैं उसी हवा में बह जाता, लेकिन नहीं, तो इसलिए मेरे उनकी नज़र में मेरा सम्मान और भी बढ़ गया कि
1: जी
0: इसने कहा था ऐसे होगा, पोस्टर दिखाया कि ये होगा। तो ये सब चीज़ अगर आप करेंगे गंभीरता से करेंगे, आप इसको ये ना सोचें हवा हवाई हो जाए एकदम सब कुछ
1: जी
0: और हम ये बन जाए पॉपुलर हो जाए बहुत सारे पैसे कमा लें, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिस पर आपको लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। इसलिए आज भी हम बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारी बातों पर लोग ट्रस्ट करें, तो हमें अच्छा
1: जी
0: लगता है कि आज भी हमारी बातों पर लोग ट्रस्ट करते हैं कि जैसे प्रदीप सदा ने लिखा है या कहा है तो वो सच होगा। तो
1: जी
0: ये चीज आज की फिल्म जो बनना चाहते हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी विश्वसनीयता बनाए,
1: जी
0: हवा हवाई बातें ऐसे ना करें कोई भी, अपना जो भी लिखें जो भी बोले जो भी करते हैं वो बहुत ही ईमानदारी से करें, और क्योंकि जो जैसी फिल्म लग रही है उस ईमानदारी से करें और बहुत अच्छे से करें। ये
1: जी
0: सबसे मैं चाहूंगा
1: जी
0: ईमानदारी कर्मठता से करें, परिश्रम से करें, दिमाग लगाएं और फिल्मों के साथ अच्छी तुलना करें। ये नहीं कि आपने लिख दिया तो अगर वो करेंगे तो वो भी उनकी अच्छी फिल्म समीक्षक के रूप में अच्छी
1: जी
0: पहचान होगी।
1: यानी फिल्म अध्ययन सिर्फ मनोरंजन नहीं है, एक जिम्मेदारी भी
0: जिम्मेदारी
1: है,
0: है
1: और आपकी जो लेखनी है या आपके जो शब्द हैं
0: हाँ।
1: उनमें गंभीरता
0: हमारे
1: भी बनी
0: बातों पे
1: रहे।
0: लोग अपना देखने जाते हैं।
1: जी
0: मैंने सबसे पहले टीवी के अंदर जो फिल्म आती थी संडे को मैं सबसे पहले नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका रिव्यू करना शुरू किया कि आज
1: जी
0: की टीवी फिल्म और टाइम्स ऑफ इंडिया में टू डेज टेली फिल्म, तो उसमें बताता शाम को जो क्योंकि एक ही मनोरंजन का साधन होता था उस समय,
1: जी
0: तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की कि लोग शाम को फिल्म देखें या ना देखें। तो वो इतना पॉपुलर हुआ लोग कॉलम, तो लोग कहते थे कि हम उसको देख के प्रोग्राम बनाते हैं कि जो आपने लिखा है आज ये फिल्म देखें या बाजार में परिवार के साथ घूमने जाएं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं। तो
1: जी
0: वो जो हमने दौर देखा है हम उसको आज तक उनकी जो दर्शकों की भावना थी तो
1: जी
0: उसको मैं सर झुकाता हूँ हमेशा, इतना सम्मान दिया तो आज
1: जी
0: भी मैं उसी लकीर पर चल रहा हूँ।
1: जी यानी अपने काम के लिए ईमानदार भी रहना
0: बिल्कुल
1: है और जो सामाजिक दायित्व है उसे भी समझना है,
0: बिल्कुल
1: और ये समझ बनी रही है, इसीलिए फिल्म से जुड़े हुए लेखन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल रहा है।
0: बिल्कुल
1: और पुरस्कार विजेता जब यहाँ
0: हमारे सामने
1: बैठे हैं
0: बैठे
1: तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, संजीव जी, चलते चलते एक तो आपकी पसंद का गाना और हमारे श्रोताओं के लिए आपकी कोई सलाह।
2: हैं। श्रोताओं के लिए सलाह किस मायने में, फिल्म समीक्षा के बारे में?
1: जी
2: अभी प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दे दिया इस बारे में कि फिल्म समीक्षक जो भी नए आ रहे हैं और फिल्में देख कर कुछ लिख रहे हैं तो उनके लिए उसमें बहुत कुछ टिप्स है,
1: जी
2: लेकिन एक दो बात मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ। वो ये कि जब फिल्म आप देखते हैं, कोई भी नया युवा अगर देख रहा है, मैं भी अपने आप को भी युवा ही मानता हूँ, है ना, तो पर्दे पे दिखाई जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है जो भी चीज़ें वो केवल खेल तमाशा नहीं है।
1: जी
2: सिनेमा के भीतर सारे विषय हैं, राजनीति भी है, इतिहास भी है, संस्कृति है,
1: जी
2: तमाम कलाओं का संगम है, पूरा समाज है, पूरा परिवार है, युवा है, सब कुछ है, महिला है, महिला

0: मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, सब कुछ है. आप उसको केवल एक मत समझिए कि केवल खेल तमाशा देख रहे हैं और गाने देख रहे हैं, केवल उस दृष्टि से सिनेमा को कभी मत देखिए. हाँ, उस नजरिए की फिल्में कुछ आती हैं, वह एक अलग मसला है. आज तो सिनेमा पर देखिए पीएचडी हो रही है, विश्वविद्यालयों में फैकल्टीज हैं, पढ़ाई हो रही है, अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल रहा है कई सालों से. तो ये इसलिए मिल रहा है और ये इसलिए पीएचडी मिल रही है क्योंकि सिनेमा को एक गंभीर विषय माना गया है जो पूरे समाज को प्रभावित करता है. सिनेमा तो फिल्म, अगर हम देखते हैं किसी फिल्म को हम देखते हैं तो उसके बारे में हम क्या लिखें? सबसे पहली बात तो यह है कि फिल्म को समझना, फिल्म को हम समझ कितना पाए हैं. अगर फिल्म हमें पसंद आई तो क्या हम ये लिख दें कि मुझे पसंद नहीं आई? क्या यह समीक्षा है? अगर हमें पसंद आ गई तो हम क्या ये लिख दें कि हमें पसंद आ गई? यह क्या यह समीक्षा है? फिल्म समीक्षा एक एजुकेशनल पार्ट है. फिल्म समीक्षा जो है एक एजुकेशनल पार्ट है. जैसा कि प्रदीप सर ने अभी बताया था कि उनकी टिप्पणी पढ़ने के बाद लोग इंस्पायर्ड होते थे कि फिल्म देखने जाते थे. पहली सूचना आप देते हैं फिल्म की गुणवत्ता के बारे में, आप उसमें बताते हैं हाँ ठीक है फिल्म में खामियां हैं, अभिनय खराब है, कहानी खराब है, उसका भी जिक्र करिए, लेकिन आप जजमेंटल मत होइए कि ये फिल्म कैसी है. दर्शकों के लिए, दर्शकों को पहले आप बताइए उस फिल्म में क्या है, और खामियां है तो बताइए, फिल्म के संदर्भ में बात करिए, वो कहानी के संदर्भ में है. ये नहीं कि अगर लव स्टोरी है तो उसकी तुलना हम वॉर मूवी से कर दें, और वॉर मूवी है तो हम लव स्टोरी की अपेक्षा उसमें डालें.
1: जी,
0: ऐसा नहीं होता. ऐसी समीक्षा कभी भी मानक नहीं मानी जाती.
1: जी, तो सही और सटीक शब्दों में दोनों पक्ष जो हैं वो सामने रखे जाएं, उसे फिल्म समीक्षा हम कहेंगे कि दर्शकों के नजरिए से भी आपने लिखा है और साथ ही जो फिल्म निर्माता है उनके नजरिए से भी. जी, और अब चलते चलते आपकी पसंद का एक और गीत.
0: आनंद आश्रम का एक गाना है
1: जी,
0: सारा प्यार तुम्हारा बांध लिया है आंचल में.
1: जी,
0: ये बहुत ही खूबसूरत गाना है
1: जी,
0: और मुझे लगता है कि चलते चलते आप इस गाने को अगर सुनाएं तो मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा और जो हमारे तमाम श्रोतागण हैं उन्हें भी बहुत ही आनंद आएगा.
1: जी ठीक है, तो हम सुनवा रहे हैं यही गाना.

0: प्राची प्रिया
1: करजोर अभिनंदन, नमस्कार। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन।
2: जी धन्यवाद।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, आपके सवाल हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: थैंक यू प्राची। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स अपॉन यंग इंडियंस टू बिल्ड ग्लोबल कंसल्टिंग अकाउंटिंग फाइनेंशियल एंड लीगल फर्म्स दैट कैन लीड द वर्ल्ड। Foreign portfolio investors were net sellers of Indian equities in the first week of September, and in bullion market, gold and silver prices declined last week.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं से दुनिया का नेतृत्व करने वाली वैश्विक स्तर की कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, वित्तीय और कानूनी कंपनियां बनाने का आह्वान किया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक सितंबर के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे और सराफा बाजार में इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
0: And before we begin the program, an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Over to you, Prachi.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नए समाधान विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। और इसी बीच अनुभव दिल्ली से हमारे साथ भुवन जुड़ रहे हैं। भुवन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार जी, लखा बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से। मार्केट मंत्र की टीम को और एक्सपर्ट्स को मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मेरा प्रश्न ये है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनको इनकम टैक्स लॉज के हिसाब से कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का परमिशन होता है, तो किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उनका चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन खराब नहीं जाए?
2: जी, इस चीज की जानकारी मेरे को अभी नहीं होगी। आप अगले सप्ताह कॉल करिएगा, इसकी जानकारी आपको मैं तब दे पाऊंगा।
0: सो लाइक कार एक्सपर्ट इज सेइंग, प्लीज डू कॉल अस विद द सेम क्वेरी नेक्स्ट वीक एंड वी विल बी होपफुली विल हैव द आंसर फॉर यू। आवर एक्सपर्ट विल हैव दैट आंसर फॉर यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs वर नेट सेलर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज इन द फर्स्ट 4 days ऑफ सेप्टेम्बर। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डिपॉजिटरी डेटा, FPIs हैव पुल्ड आउट 7,443 crore rupees फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट टिल नाउ इन सेप्टेम्बर। Of the total net outflow, 8,403 crore rupees were withdrawn through selling on stock exchanges, while 960 crore rupees was invested through the primary market. Despite robust domestic GDP data, healthy GST collections, record high forex reserves, and a stable currency, FPIs persisted as net sellers in domestic equities. However, in August, FPIs infused 29,631 crore rupees into Indian equities. Meanwhile, the debt market has witnessed mixed trends in foreign portfolio investors' flows. So far in September, FPIs have infused 217 crore rupees in debt securities through the general limit route. In contrast, the voluntary retention route, VRR, has recorded outflows of 230.

0: ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि कुछ समय से बहुत दफ़े ऐसा होता है कि जो रीसेंट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कोई सा फंड ऐसा होता है अगर आप देखेंगे कि अच्छा अभी पिछले 6 महीने में ये एकदम नंबर वन पे इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, या पिछले 1 साल में इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। और यहीं पर बहुत ज़्यादा निवेशक गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एकदम हम लोग आस पास के पिछले 6 महीने के, पिछले 3 महीने के, 1 साल के रिटर्न्स देखते हैं और जो टॉप पे होते हैं हम लोग सीधा उसमें निवेश कर देते हैं। बट वो चीज़ सही नहीं है,
1: लोभ आ जाता है मन में तुरंत।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा देखिए, ये पास रिटर्न्स पे बेसिस पे होता है, एक आपको एक खाली इंडिकेशन दे रहा है कि वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप उस पर्टिकुलर फंड की परफॉर्मेंस एक लंबे समय में देखें, रोलिंग रिटर्न्स पे, या फिर एक लॉन्ग होराइजन में 3 साल 4 साल 5 साल, और मार्केट के डिफरेंट फेजेस में, कि जैसे जब मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो उस फंड ने अपने कैटेगरी के बाकी फंड्स के तरह कैसे काम किया है। केवल अभी ठीक पिछले कुछ 1-2 महीने की परफॉर्मेंस या 6-7 महीने की परफॉर्मेंस एक अकेला कारण नहीं होना चाहिए कि आप उस फंड में निवेश करें।
2: आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग अकार, यू नो, होल्ड्स स्पेशली ट्रू नाउ इट इज बिकॉज वी बीन सीइंग मार्केट्स हैव बीन वोलेटाइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ड्यू टू वेरियस रीजंस। सो लाइक यू सेइंग दैट व्हेन यू आर असेसिंग अ फंड, व्हेन यू आर यू नो असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ फंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट गो बाय अ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। वी हैव टू लुक, एंड लाइक आई सेड, द मार्केट इज वोलेटाइल राइट नाउ, सो इट्स बेटर इफ अ फंड इज डूइंग वेल और हैज डन वेल, यू नो, इन दिस पीरियड, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट दैट वी गो बैक अ फ्यू इयर्स एंड सी how it was performing, you know, or if a fund, you know, does well, or say let's a few months down the line when the market is stable, it'll be very pertinent to see how that fund was performing right now when the markets were volatile.
0: Right.
1: भोपाल से इस बीच हमारे साथ शंकर जुड़ रहे हैं। शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: अकाल जी को, मार्केट मंत्र टीम को भी नमस्कार। मेरा सवाल, माय क्वेश्चन इज अबाउट लार्ज कैप। लार्ज कैप फंड हैज गॉन डाउन और नॉट परफॉर्म वेल बेसिकली ड्यू टू एफआईआई पुलिंग आउट लॉट ऑफ मनी। सो इफ एनीवन हैज अ सरप्लस फंड बिसाइड्स हिज रनिंग एसआईपीज, व्हाट वुड बी द राइट स्ट्रेटजी? शुड इट बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप बिकॉज दे आर डाउन, और वी गो फॉर कॉन्ट्रा फंड? व्हिच स्ट्रेटजी वुड वर्क बेटर इन फॉर पीपल हु हैव सम एक्स्ट्रा फंड अवेलेबल नाउ फॉर इन्वेस्टमेंट? थैंक यू।
0: शंकर जी, स्पेसिफिकली, यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट इट्स सम हाउ सीम लाइक दैट यू आर ट्राइंग टू, यू नो, कैप्चर अ मार्केट अपॉर्चुनिटी और ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, बिकॉज यू नो एज यू वर सेइंग दैट यू नो दे आर डाउन एंड आई हैव अ बिट ऑफ सरप्लस। सो हियर आई वुड लाइक टू कॉशन यू बिकॉज यू नो इट्स नेवर अ गुड आइडिया टू टाइम द मार्केट बिकॉज यू रियली डोंट नो इन विच डायरेक्शन द मार्केट वुड मूव। सो फर्स्टली एज यू आर टॉकिंग, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल don't, you know, invest with the intention of making quick money or, you know, getting good returns over the short term or, you know, being opportunistic. So the whole idea of investing in mutual funds is that you know, you diversify your risk. And also here comes the concept of SIP, wherein, you know, you stagger your investment over a period of time. You just said that you already have an ongoing SIP. And if you have a surplus, what I would rather recommend is that, you know, even with that surplus amount, you start another SIP to, you know, spread it over a period of time, maybe 6-7 months or a year, depending on how large the sum is, what you know, value does it hold in your portfolio. And if you fear to you know, consume that amount, it's better you know, put that amount in a liquid fund and set up an STP from there. And whether to invest in large cap specifically or not, I would say it again depends on you know, your whole portfolio and the time horizon and the risk appetite. You also mentioned about the contra fund. So definitely, you know, when you are investing in equities, value funds and contra funds are a good add-on to your diversified portfolio, but they may not be necessarily completely invested into just large cap stocks. They might carry a slightly more risk. So it would be better to, you know, look at your overall portfolio, and the value contra funds should be like 20-30% of your diversified portfolio.
2: We have the next caller with us online. Pradeep is calling us from Delhi. Pradeep, I will request you to just be a little more patient because I want to ask Akar here. We're talking of contra funds. For those of our listeners who do not know, what exactly is a contra fund?
0: So contra funds usually invest in the strategies or you know, the stocks of the companies

0: which are currently not in favor or, you know, in
1: against
0: which,
1: the tide.
0: Right.
1: Okay, now let's take the call. Pradeep has been very patient. Pradeep, welcome to Market Mantra and ask your question, please.
2: Namaskar, Market Mantra team. Jeez. Pradeep bol raha hu Delhi se.
1: Ji, sawal puchhe.
2: Sir, mera na ek mid cap mein chal raha hai SIP. Beech beech mein main usme lump sum bhi karta rehta hu. To sir, usme na around mein 5 lakh ke round mein abhi jama kara chuka hu usme paisa. लेकिन वो मिड कैप ऐसा है कि उसका पोर्टफोलियो बड़ा कंसंट्रेटेड है काफी
0: जी.
2: तो मैं सोच रहा था कि मेरे को अभी उसमें जैसे 5 लाख रुपए मेरा जमा हो चुका, क्या मेरे को कोई दूसरा मिड कैप ले लेना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है कि मैं बीच बीच में ना लमसम करता हूँ, तो जैसे मेरा एक चल रहा है फार्मा में कर देता हूँ, मैं डिफेंस में चलता हूँ, SIP मेरी चल रही है, तो बीच बीच में जैसे करेक्शन आती है तो मैं वहाँ लमसम कर देता हूँ, तो क्या मेरी स्ट्रेटेजी ठीक है सर? प्लीज आप बताइए.
0: देखिए, पहले जैसे आपने बताया कि आप एक मिड कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, तो आपकी बातों से मैं जितना समझ पा रहा था, आप एक ही मिड कैप फंड में आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो लगा रखा है. तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि देखिए, डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है. सारा का सारा आपका जो पोर्टफोलियो केवल और केवल एक फंड पर निर्भर नहीं होना चाहिए. तो अगर ऐसा है कि केवल वो एक फंड में, तो आपको एक दूसरा पोर्टफोलियो, एक दूसरा मिड कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं.
1: वो ये भी जानना, यही जानना चाह रहे कि वो क्या करें ऐसा.
0: हाँ जी, तो उस केस में आप एक और मिड कैप फंड ऐड करिए, बट केवल खाली एक यही कारण नहीं होना चाहिए कि उसमें अभी इतना अमाउंट हो गया कि 5 लाख का उसमें पूंजी इकट्ठी हो गई, इसलिए मैं दूसरे एक और फंड में लगा देता हूँ, अब इसमें हो गया. अगर वो फंड बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और जो आपका एक पूरा पोर्टफोलियो है उसमें ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बेट बनी हुई है और फंड्स में निवेश है, आपने ठीक ठाक करा हुआ है, इसके अलावा आपने एक डाइवर्सिफाइड फंड में भी करा हुआ है, तो उस सिनेरियो में ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप किसी एक और फंड को ऐड करें, क्योंकि वहाँ पर वरना फिर आप एक कलेक्टर ऑफ फंड्स बन जाएंगे और बहुत सारे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड होते रहेंगे.
3: जी, अगर कई बार ऐसा होता है, और अभी हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी वही बात बताई जो मैं अभी कहने जा रही हूँ, कि हम SIP कर रहे होते हैं और साथ के साथ हमारे पास लमसम भी अमाउंट होता है. आपने कहा, हम जब शंकर जुड़े हुए थे भोपाल से, तो आपने कहा कि जो लमसम अमाउंट है, अगर वो अमाउंट अलाउ करता है तो आप उसको SIP के तौर पर इन्वेस्ट करें, ना कि आप लमसम लगाएं पैसा. इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसकी महत्ता है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं?
0: देखिए, जब भी आप एक सिस्टमैटिक मैनर में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप बेसिकली जो आपकी परचेज कॉस्ट है आप उसको एवरेज आउट कर देते हैं. जैसे कि इसको एक, अगर मैं एक उदाहरण में समझाऊं, मान लीजिए आज किसी के पास एक लाख रुपए लमसम है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है और उसने पूरा का पूरा आज मार्केट में डाल दिया, और एकदम ही डालने के बाद एक हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद मार्केट नीचे गिर गया, तो जो उसका पूरा का पूरा पैसा है वो आज के एक मार्केट पॉइंट पे घुस गया है और वो एक रिस्क बन गया, एक एंट्री पॉइंट का रिस्क बन गया. वहीं पे अगर उन्होंने ये पॉइंट, ये जो अमाउंट है, कुछ 3 महीने या 6 महीने में स्प्रेड करा होता, तो वो सारा का सारा पैसा आज इन्वेस्ट नहीं हुआ,
3: तुरंत लाल में नहीं जाता.
0: बिल्कुल, तुरंत लाल में नहीं जाता, और वो आगे आने वाले समय में जब मार्केट नीचे गिरा होता वो ज्यादा खरीद पाते, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि मार्केट सस्ता, हमने ज्यादा चीजें खरीद ली. बिल्कुल, तो एक आपके जो परचेज कॉस्ट है उसको एवरेज आउट कर देता है, और आपका जो रिस्क है वो उससे कंपैरेटिवली मिनिमाइज हो जाता है मार्केट में गलत एंट्री पॉइंट में घुसने का.
3: बिल्कुल. अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से, इनका नाम है सुभाष. सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: नमस्कार सर.
0: नमस्कार.
4: नमस्कार सर
1: जी, सवाल पूछे सुभाष जी.
0: नमस्कार सुभाष जी.
4: सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि निफ्टी इंडेक्स फंड को अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एक्सपेंस रेशियो होनी चाहिए मेन, या कुछ और क्राइटेरिया होना चाहिए?
0: नहीं, मेन उसमें एक्सपेंस रेशियो रहेगा. देखिए, जितने भी सारे जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, ये फंड्स ऐसे नहीं होते कि इनमें एक फंड मैनेजर का बहुत ज़्यादा रोल होता है. ये फंड्स केवल आपका जो मार्केट है, जैसे निफ्टी आपने खुद बोला, उसको ट्रैक करेंगे. जिस रेशियो में अलग अलग स्टॉक्स होते हैं निफ्टी के इंडेक्स में, ये फंड्स आपका सारा पैसा उसी प्रपोर्शन में, उन्हीं स्टॉक्स में, उतने ही नंबर ऑफ स्टॉक्स में निवेश करते हैं. तो आमतौर पर जितने भी निफ्टी के या कोई से भी इंडेक्स फंड्स है जो एक सेम इंडेक्स को ट्रैक कर रहे, उनके रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता. उनके रिटर्न्स में जो अंतर के कारण होते हैं वो दो होते हैं केवल. एक होता है आपका एक्सपेंस रेशियो और दूसरा होता है ट्रैकिंग एरर. ट्रैकिंग एरर को अगर मैं एकदम आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो ये हो गया कि वो जो उस इंडेक्स को ट्रैक करने का काम कर रहा है उस

0: वो डुप्लीकेट करने का, रिप्लीकेट करने का वो कितने अच्छे से कर पा रहा है। अगर ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा होएगा तो फिर ज़्यादा डिफरेंस होएगा, अदरवाइज डिफरेंस कम होएगा। तो आप केवल एक्सपेंस रेशियो पे सॉर्ट करिए शुरुआती तौर पे, और जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना अच्छा, और आप उस इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं।
1: We do have a next caller from Delhi. Sujan Negi is calling us from there. But before we take your call, Sujan, Prachi, why don't you give us how the gold silver prices were during the week?
2: बिल्कुल श्रोताओं, अन्य खबरों में सोने और चांदी के भाव समझ लेते हैं। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। मजबूत अमरीकी डॉलर, अमरीकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और निवेशकों की धारणा इस उम्मीद से भी प्रभावित हुई कि अमरीकी फेडरल रिजर्व सितंबर की बैठक में भी आक्रामक मौद्रिक नीति का रुख बनाए रखेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाले सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान 2.2% गिरकर 152,767 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी का वायदा भाव 2% की गिरावट के साथ 231,922

0: रखेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाले सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान 2.2% गिरकर 1,52,767 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी का वायदा भाव 2% की गिरावट के साथ 2,31,922 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर अनुबंध वाला सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान 1.2% की गिरावट के साथ $4,441.90 प्रति ट्राई आउंस पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी का वायदा भाव 1.4% फिसल कर $66.04 प्रति ट्राई आउंस पर आ गया। और सुजान नेगी जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: हाँ जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्ते,
0: बहुत अभिनंदन।
1: हाँ जी मैम, मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये है कि मैंने SBI कॉन्ट्रा फंड में मनी मतलब मैंने लगा रखी है, उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है मेरे पैसे, तो वो माइनस में दिखा रहा है, तो क्या मेरे को स्विच ओवर कर देना चाहिए किसी दूसरे फंड में? और करना चाहिए तो कौन से फंड मुझे को, अब कौन सा फंड लेना चाहिए? और स्विच करने का मतलब चार्ज लगता है क्या? तो यही कुछ क्वेश्चन है मैम मेरे।
2: देखिए सुजन जी, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ समय में मार्केट बहुत अच्छा नहीं रहा है और जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स है वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो केवल उस शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के वजह से आप एकदम से ऐसा डिसीजन ना लीजिए कि आपको उस फंड से जाना चाहिए। अभी थोड़ा सा उसमें रहकर कुछ उस फंड को थोड़ा और समय दीजिए और देखिए उसका जो रिटर्न्स है। यहीं पे दूसरी चीज़ आती है, जो एक आपने काफ़ी अहम क्वेश्चन पूछा कि अगर आप स्विच करते हैं तो क्या उस स्विच करने के चार्जेस लगेंगे। देखिए, जब भी आप किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे में जाते हैं या निकालते हैं तो केवल दो तरीके के चार्जेस होते हैं, या जो एक कॉस्ट होती है उनको चार्जेस नहीं बोलना चाहिए, जो आपको इम्पैक्ट करेगी। पहला है कि उस पर जो भी टैक्स है, टैक्स हमारा म्यूचुअल फंड्स में कैपिटल गेंस के तौर पे लगता है, और जो इक्विटी फंड्स है यहाँ पे अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है तो आपका जो टैक्स है वो 12.5% रहता है। लेकिन यहाँ पे एक न्यूएंस है कि हर फाइनेंशियल ईयर में इक्विटीज़ के और इक्विटी फंड्स के जो भी आपकी गेंस होते हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड के होते हैं, वो पहले 1.25 लाख पर टैक्स की छूट होती है, उसके बाद 12.5% लगता है। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो आपका जो टैक्स उस गेंस पे वो 20% लगता है। दूसरा एक कॉस्ट रहता है एग्जिट लोड का। अगर आप एक फंड के एक डिफाइंड पीरियड से बहुत जल्दी निकालते हैं तो वहाँ पे आपके NAV का कुछ परसेंटेज काट लेते हैं।
0: दिल्ली से हमारे साथ प्रकाश जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार।
0: नमस्कार
3: सर। रस्तोगी जी को भी नमस्कार।
2: नमस्कार
3: सर। सर मेरे को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 5 साल के लिए, तो दो अच्छे मल्टी कैप फंड बता सकते हैं?
0: फंड स्पेसिफिक तो हम यहाँ पर जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई भी अन्य सवाल हो तो ज़रूर अगले सप्ताह आप संडे को हमें कॉल करें, हमें संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। द 7 core OPEC प्लस कंट्रीज सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, कुवैत, Kazakhstan, Algeria and Oman met virtually today to review global market conditions and outlook. They decided to keep the grouping's oil output policy unchanged for October amid global uncertainty. The decision comes after OPEC Plus increased production by around 188,000 barrels per day for September, completing the rollback of a voluntary production cut of around 1.65 million barrels per day that had been introduced in 2023. The meeting comes against the backdrop of continuing disruptions to the oil exports, including those linked to the conflict involving Iran and disruption around the Strait of Hormuz. These disruptions have limited the impact of OPEC Plus production decisions on oil, global oil supplies and prices. And let's take the next call. Kunj Bihari is calling us from Mathura. Welcome to the program. Please ask your question.
5: Dhanyawad.
4: Ji.
5: मैं पूछना चाहूंगा कि आप बताते हैं कि आपका जो पैसा है एक मैनेजर के द्वारा लगाया जाता है, वो मैनेजर किसके द्वारा बिठाए जाते हैं, उनको क्या बेनिफिट है जो हमारा पैसा कंपनियों में इधर लगाते हैं? क्या वो हमारे फायदे के लिए ही ठीक है, क्या कभी वो हमारे को लॉस भी करा सकते हैं?
2: से जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये उस फंड म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा नौकरी पे रखे जाते हैं, उनको एक काम असाइन किया जाता है और वो लोग एकदम प्रोफेशनल्स होते हैं। सो फंड मैनेजर्स का रोल ही होता है कि एक जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है आप और मेरे जैसे लोग,

0: अगर हम लोग शेयर मार्केट में ये चीज़ नहीं चेक कर सकते कि कब कौन से स्टॉक में लगाना है, किस कंपनी में लगाना है, तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो इस चीज़ की पूरी ट्रेनिंग पढ़ाई करके प्रोफेशनल तरीके से और एक काम करते हैं. सो उनका फ़ायदा बेसिकली ये है कि उनका जॉब है, दे आर बीइंग पेड फॉर दिस.
1: अन्य खबरों में, घरेलू निवेशकों का ध्यान अगले सप्ताह पश्चिम एशिया में होने वाले घटनाक्रम, कमोडिटी कीमतों, बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव और मुद्रा बाजार में होने वाले बदलावों पर रहेगा. प्राथमिक बाजार में मुख्य बोर्ड के 12 आईपीओ अगले सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं. अमरीका में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक और साप्ताहिक बेरोजगारी दावों के आंकड़े समेत प्रमुख आर्थिक संकेतक निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे. इस बीच जापान, ब्रिटेन और यूरोजोन के जीडीपी के अनुमान भी जारी किए जाएंगे. चीन में पीपीआई और व्यापार से जुड़े आंकड़े प्रमुख आर्थिक संकेतकों में शामिल होंगे जिन पर निवेशकों की नजर होगी.
2: More than 500 institutional investors, finance ministers and business leaders will participate in the inaugural iBRICS summit on the sidelines of BRICS summit in New Delhi on the 12th and 13th of this month. The two-day summit is designed to connect sovereign capital with bankable infrastructure, energy and digital capacity projects across 21 BRICS member states and partner nations. Sovereign wealth funds, pension funds and family offices attending the iBRICS summit manage a total wealth of $1 trillion. They will discuss cross-border investments, non-dollar settlements and payment systems among BRICS economies. Discussions are also expected on linking national fast payment systems such as India's Unified Payments Interface or UPI and Brazil's PIX, along with interoperability between central bank digital currencies. The summit comes at a critical juncture as BRICS economies adapt to shifting trade dynamics, US tariff pressures and high dollar clearing costs.
1: आकार कार्यक्रम में आने के लिए मेरे और अनुभा के और हमारे तमाम श्रोताओं के और कॉलर्स के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: धन्यवाद.
2: And before we close, a look at the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon young Indians to build global consulting, accounting, financial and legal firms that can lead the world. Foreign portfolio investors were net sellers of Indian equities in the first week of September, and in bullion market, gold and silver prices declined last week. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
1: Namaskar.

0: பலித்தந்த பாடலோடு நிறைவு பெறுவது திரைகானம் நிகழ்ச்சி. சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल दिल्ली में इमारत गिरने की दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगर से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स IRGC ने कहा कि उनकी एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक अमरीकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को कल दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल्स में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टेंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उप विजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aditi Lumba. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi yesterday. Three persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. After the visit, Ms. Gupta said relief and rescue operations are continuing on a war footing. She said those found responsible for the incident will not be spared. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. The University of Delhi has expressed deep pain and sorrow over the building collapse in Satyaniketan. Meanwhile, Sri Venkateshwara College of the University will remain closed today in the wake of the incident. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of Swami Narayan Hindu Mandir in Paris, through video conferencing, Mr. Modi said, from technology, AI and defence to space and climate action, both nations are moving forward together with

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर तरह संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल दिल्ली में इमारत गिरने की दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कन्क्लेव के उद्घाटन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया में चल रही उन खबरों और अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया है जिसमें इसरो के निजीकरण या उनकी भूमिका कम किए जाने की बात की जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने स्पष्ट किया कि ना तो उसका निजीकरण किया जाएगा और ना ही उसके महत्व को कम किया जाएगा। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य संगठन की भूमिका को कमजोर करना नहीं बल्कि उसे भविष्य की अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीकों पर ज्यादा ध्यान देने का मौका देना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का उद्देश्य एक बड़ा मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष तंत्र तैयार करना है। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिला प्रशासन ने तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट सिक्किम के मंगन जिले के चियाकुंग के पास भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के बाद जारी किया गया है। सिक्किम के मंगन पूर्वी और पाक्योंग जिलों के प्रशासन ने भी तीस्ता नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। घटना के तुरंत बाद सिक्किम का जिला प्रशासन और आपातकालीन दल सक्रिय हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 8 सितम्बर तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyanaketan area of Delhi yesterday. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Chief Minister Rekha Gupta has ordered a ministerial inquiry into the incident and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. Earlier, the Chief Minister visited the mishap site and took stock of the situation. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. Delhi Mayor Pravesh Wahi has said that all illegal constructions having more than 4 floors will be sealed with immediate effect. He said strict action will also be taken against officials found responsible, including their immediate dismissal. In a social media post, the mayor said the orders will be implemented with immediate effect. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said, together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of Swaminarayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said, from technology, AI and defense to space and climate action, both the nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections. Union Home Minister Amit Shah has said the government has prepared a 3-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a 4-pillar approach aimed at dismantling narcotics network. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के संत निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर तरह संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह निर्णय घटनास्थल का निरीक्षण करने और घटना के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की दुखद घटना के मद्देनजर दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज बंद रहेगा। कॉलेज ने बताया है कि सत्य निकेतन क्षेत्र में कई पेइंग गेस्ट आवास बंद होने और वहां रह रहे छात्रों में असुरक्षा की भावना को देखते हुए छात्रों को कॉलेज की कक्षाओं में ठहराया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह अस्थायी व्यवस्था की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सतनिकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर तरह की संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सतनिकेतन में इमारत ढहने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह निर्णय घटनास्थल का निरीक्षण करने और घटना के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक से बात करके स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्यवाही सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस नई ऊर्जा और गति के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में भी मना रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया में चल रही उन खबरों और अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया है जिससे इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने स्पष्ट किया कि ना तो उसका निजीकरण किया जाएगा, ना ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से संगठन की भूमिका को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे भविष्य की अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीकों पर ज्यादा ध्यान देने का मौका देना है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है।

इसमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों यात्रियों को 2 सितंबर को दोहा से दिल्ली पहुंचने के बाद कस्टम्स अधिकारियों ने रोका। उनके सामान की जांच के दौरान कुल 20.883 किलोग्राम वजन के सोने और चांदी के सिक्के बरामद किए गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों को हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस पुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश विशेष वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्यवाही सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस नई ऊर्जा और गति के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वह 3 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हैं। वे दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग AIM कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है, ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिला प्रशासन में तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट सिक्किम के मंगन जिले के चियांगकुंग के पास भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के बाद जारी किया गया है। सिक्किम के मंगन, पूर्वी और पाक्योंग जिले के प्रशासनों ने भी तीस्ता नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 20 एशियाई कप के मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ताशकंद में कल अपने अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। इसके साथ ही भारत ने 20 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट के मुख्य चरण में जगह बनाई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में कल दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि

0: पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिदेशक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये निर्णय घटनास्थल का निरीक्षण करने और घटना के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्रवाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत और फ्रांस नई ऊर्जा और गति के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वो संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वो दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग AIM कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। पश्चिम बंगाल के कैलिम्पोंग जिला प्रशासन ने तीस्ता नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। ये चेतावनी सिक्किम के मंगन जिले में चियाकुंग के पास भूस्खलन के कारण तीस्ता नदी का मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के बाद जारी किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया में चल रही उन खबरों का और अटकलों का स्पष्टीकरण दिया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम किए जाने की बात कही जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने स्पष्ट किया कि न तो उसका निजीकरण किया जाएगा और न ही इसके महत्व को कम किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को 11-21, 21-13 और 21-17 से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi yesterday. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the incident and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment.